0: उगांडा मैराथन को मिति परिवर्तन संबंधी सूचना। गत 2026 अगस्त 20 में आयोग विनाशकारी बाढ़ी पहरो ठूल जनधन को क्षति प्रति हमी गहरो सकूं सही राष्ट्रीय विपत्ति को बुझी गंभीरतापूर्वक ध्यान दी उक्त मैराथन को मिति सारिक हो। इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति दुखा अटूट सहयोग विश्वास को हम संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाह। नया मिति में इस मैराथन भव्य और सफलतापूर्वक संपन्न करना हमी थप सहयोग सूचना तथा शुभकामना प्रदान कर हार्दिक आग्रह करेट पांडा नेटवर्क संघ को सहकार में इस आयोजक समिति ने आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 में आयोजना करने वाने रेट पांडा मैराथन को मिति परिवर्तन करी 2026 नोवेम्बर 28 में आयोजना करने निर्णय विवराज संबंधित सभी में जानकारी कराइ।
1: अध्यक्ष निमा टेन्डर शेर्पा हिमालय स्वास्थ्य र वातावरण सेवा।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sanche Suru FM Studio Time
4: It's 7 PM Saatko Saat Baje
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: Sound check. Solo FM. Studio time.
1: It's 8 p.m. रातको 8 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुदकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू.

0: Sanche. Solu FM, Studio Time.
1: 10 p.m. Ratko 10 baje.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू।